welcome to yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. इस गाने को अपने पसंद किया होगा, ऐसी मैं आशा कर देता हूँ. मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा. अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ. तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 078 341778666, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-43।

Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

0: मिलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हिट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230
2: For your family treat this summer.
3: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

Welcome back after this beautiful song. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This beautiful song है. मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर you know, you just started falling for this song. So this was one for me. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। Goodbye.

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ आप तमाम सुनने वालों को नाहिद चट्ठा की जानिब से हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी कैसे हैं आप उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से गर्मी का इशारा है जी अच्छी सी धूप है बहुत अच्छा मौसम है नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा दोबारा से गर्मी की वेव आने वाली है यही सुने आए जी तो यही होएगा जनाब आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर डैप पर आप सुन रहे हैं जनाब ब्रेडफोर्ड में कीतली में इल्कली में स्किप्टन में लीड्स में हैलिफैक्स मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मेल्टन कीन्स में सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड लॉन्च इन डाबी जी हाँ डाबी में भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं अगर आप इन सब स्टेशन से नहीं सुन पा रहे समहाउ तो आप एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से सुन सकते हैं ऑनलाइन हमें हमारी वेबसाइट पर जो कि है www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio जी सामिन और जैसा कि मैंने कहा कि मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिद चट्ठा मेरा और आपका साथ रहता है हवा के दोष पर हवा की लहरों से हमारी आवाज़ गुजरती हुई आपकी समातों से टकराती है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2 यानी कि 11 to 2 होता क्या है जी हमारे प्रोग्राम में बातें होती हैं टेलीफोन कॉल्स आपके होते हैं कुछ शायरी होती है अच्छे अच्छे से गीत होते हैं और जो हमारा लास्ट आवर होता है वो होता है मेरा फेवरेट आवर डिस्कशन आवर जिसमें आप हम किसी भी एक मौजू को ज़ेर बहस ला के उस पर गुफ्तगू करते हैं आपके कीमती ख्यालात से आप हमें नवाजते हैं और बाकी लोग भी सुनते हैं बहुत से लोग जो ऑन एयर बात नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक्स मेरे थोड़े से टची भी होते हैं तो कई लोग अपने ख्यालात का इजहार ऑन एयर नहीं करना चाहते तो वो हमें ऑफ एयर फ़ोन करके बता देते हैं कि नाहिद हमारी तरफ से ये कह दो और फिर हम कह देते हैं जी ऐसा ही होता है तो आज का जो प्रोग्राम है सामईन बहुत ही खासुल ख़ास होने वाला है बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है वो किस तरह से टॉपिक तो हमारा होगा ही एक और आज उस टॉपिक के हवाले से हमारे पास एक मेहमान आएंगी मेहमान दूर से आ रही हैं ब्रेडफोर्ड में नहीं रहती हैं कहीं दूर से आ रही हैं और वो मेहमान हमें बताएंगी कि उनकी आप भी थी क्योंकि जैसे कि मैं मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ माशरे के रवैयों पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ तो सामीन ऐसा ही होता है कि जो माशरे हमारे माशरे के हमारे इर्द गिर्द के लोगों के जो रवैये होते हैं वो हमारी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ हमारी पूरी ज़िंदगी पे कैसा असर डालते हैं तो उसके बारे में बात होगी अपने रवैयों से हम किस तरह एक अच्छे भले इंसान की ना सिर्फ ज़हनी हालत बल्कि पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं और इसमें सिर्फ एक बंदे का कसूर नहीं होता हमारी आंख का इशारा हमारा उसको देखने का अंदाज़ हमारे उसके बारे में बात हमारा उसकी तरफ जेस्चर हमारी किसी और से बात उसके बारे में या डायरेक्ट उसके साथ हमारा सलूक ये हमारी मेहमान बहुत कमज़ोर थी एक वक्त में बच्ची हैं बहुत कमज़ोर थी लोगों के रवैयों से डिप्रेस हो गई फिर उनको किस तरह से वो ख़ुद बताएंगी कि फैमिली ने समझा जो कि हमारे साउथ एशियन लोग अक्सर समझ लेते हैं कि इसमें जिन है इसका जिन निकालो या फिर उसको दम करवाओ ये और वो और फिर उसके बारे में बातें कर करके वो बेचारी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई मेंटल हॉस्पिटल से फिर निकली फिर दुनिया ने उसको दोबारा से जो कसर रह गई थी वो पूरी की और फिर वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई और वो यूके से नहीं थी वो नॉर्वे से आई थी या किसी और कंट्री से आई थी नॉर्वे से नहीं तो वो ख़ुद बताएंगी ज़्यादातर बातें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ज़ारा हुसैन आज हमारे साथ होंगी वो रस्ते में हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे और ये बात को, इस बात को साबित करने के लिए कि हमारे रवैये एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे तबाह कर देते हैं। हम सब ठोकरें खाए हुए लोग होते हैं, लोग हमें देते हैं, लेकिन कोई ऐसा टारगेट मिल जाता है जिसके ऊपर सभी लोग अपना जोर आजमाई करके उसकी क्या हालत कर देते हैं। वो जिंदा मिसाल, जिंदा सबूत, बहुत ही बहादुर बच्ची हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं एग्री करती हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में आके बताऊंगी। ये सिर्फ मकसद यह है, किसी को पॉइंट आउट करना मकसद नहीं है, सिर्फ हम अपने आप की इसलाह करें कि कहीं हमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हो जाती अगर हम अपने इर्द गिर्द किसी पर्टिकुलर इंसान को देखते हैं जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है या कुछ, तो सिर्फ उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ओपनली आज आपको बताएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आप फ़ोन करें तो कॉल को मुख्तसर रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए और उसके इस बहादुर स्टेप को कि वो आज आके ऑन एयर रेडियो पे 200,000 से ज़्यादा लिसनर्स को अपनी कहानी बताने वाला हौसला उसने लाया है और जो उसके ऊपर बीती है, उस बच्ची के लिए को बहुत ढेर सा प्यार दीजिएगा। इतना प्यार दीजिएगा कि उसको पता चले कि माशरे में ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ पागल बना देते हैं, माशरे में अच्छे लोग भी हैं जो आपका हौसला बढ़ाते हैं और मे बी इस बात से उसकी ज़िंदगी का एक और रुख उसको नज़र आ जाए, कोई और राह बदल जाए, कोई और राह निकल आए और वो अपने मेंटल, अपने ज़हनी सफ़र में उसको एक रोशनी नज़र आ जाए। सो दिस इज़ टू वे, वो स्पेशली हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, हमारी बहुत बहुत स्पेशल मेहमान। बस आपसे दरख्वास्त है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कॉल्स को मुख्तसर रखिएगा और ज़रूर हमारी उस बच्ची को अप्रिशिएट कीजिएगा। जी ये तो हो गया जी हमारा आज के प्रोग्राम का तारुफ। बढ़ते हैं जी हिट ऑफ द आवर की जानिब, हिट ऑफ द आवर सुनते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा।
1: The Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: कहो ना प्यार है, ऐवें कह दे, क्यों कहें भाई? ऐसा करते हैं कि हम टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं जनाब के हुआ चाहते हैं 11:16, 16 मिनट्स पास्ट 11। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के उस पार। हमारे साथ रहिएगा वाजिद भाई, तोड़े लाई पंजाबी शायरी होएगी कमर्शियल ब्रेक तो बाद, साढ़े नाल रहना।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio. Sunrise Radio.
0: जी हाँ सामीन, वेलकम बैक। आप वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद और वाजिद भाई, एज प्रोमिस्ड, आपके लिए पंजाबी की शायरी। सोच रही हूँ कि लंबी सी शायरी सुनाऊं कि छोटी सी शायरी सुनाऊं। चलें, इस स्टार्ट है थोड़ी सी लंबी या थोड़ी दरमियान में, बहुत लंबी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, ठीक है? तो सुनिएगा। मान किसे नू तन दौलत दा, किसे नू शौक अदावां दा। मान किसे नू तन दौलत दा, किसे नू शोख अदावां दा। असी गरीब न माने सानू, हिको मान वफावां दा। दिल दे कच्चे वेड़े अंदर, दिल दे कच्चे वेड़े अंदर खे उड़ दिए यादां दी। किन्ने सालां तो नहीं मुड़िया राही दिल दियां रावां दा। अज भी मेरियां पलकां उत्ते, अज भी मेरियां पलकां उत्ते ओदी याद दे दीवे ने। हैं कैसे, पलकां उत्ते दीवे बाल के अख नहीं सड़ जानी, पर चलो बहरहाल। अज भी मेरियां पलकां उत्ते ओदी याद दे दीवे ने, कल भी मेरियां बुल्लां उत्ते सेक सी ओदियां सावां दा। वन सवन्ने राबर लबन नाल ते मंजिल मिलनी नहीं, पहला कोई पक ते कर लो जलियो अपनी रावां दा। यारो सोचो कल तो एथे बेवकते मी आंदे ने, यारो सोचो का तू इत्थे बेवकते मी आउंदे ने, लोड़ पवे ते सुक जांदा ए पानी क्यों दरियावां दा। वाह, इट्स अ वेरी वेरी डीप वर्स, बहुत गहरा शेर है। यारो सोचो का तू इत्थे बेवकते मी आउंदे ने, लोड़ पवे ते सुक जांदा ए पानी क्यों दरियावां दा। सुके दूध ते डब्बे आतिफ हर हट्टी ते विकते ने, सुके दूध दे डब्बे आतिफ हर हट्टी ते विकते ने, होरे ताइयों सुक जांदा है दूध भी अजकल मावां दा। बहुत ही खूबसूरत शायरी, और ये है शायरी अखलाक आतिफ की, बहुत ही अच्छा लिखा है। मान किसे नू तन दौलत दा, किसे नू शोख अदावां दा। असी गरीब नमाणे सानू, हिको मान वफावां दा। जनाब, इसके साथ ही उम्मीद है वाजिब भाई आपको और तमाम सुनने वालों को पसंद आए होंगे ये चंद अशआर और नूर जहां की आवाज में गीत। आहा, बहुत खूबसूरत गीत है, एंजॉय कीजिएगा।

जी हाँ, जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी भर आए चैन नहीं आए। जी हाँ, ये तो हमारा गीत था जो आपने सुना। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब, जो कि ले जाएगा ठीक हमें हमारे कमर्शियल ब्रेक की तरफ। तो बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं। जनाब, कहना ही क्या।

0: अरे कहना ही क्या, ये कहना कि बढ़ते हैं हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब ले, और कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद गीत होगा हमारी बहन बानो जी के लिए। आपके मेहमान आए हैं लंदन से, उनको डेडिकेट करूंगी ये गीत और आपको डेडिकेट करूंगी, और आपकी तवासत से तमाम सुनने वाले इंजॉय करेंगे ये वाला गीत। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ, पहले कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद ये खूबसूरत सा गीत, फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ, प्यार ही प्यार बांटना चाहिए, प्यार के तोहफे देने चाहिए। और उम्मीद है पानु जी आपको ये गीत पसंद आया होगा और आपके मेहमानों को भी ये गीत पसंद आया होगा जो लंदन से आए हैं। जी तुसी लंदन तो आए हो, साढ़े भी मेहमान हो जी, तो उम्मीद है आपने ये गीत पसंद किया होगा। जन्नत जी, आपका टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ और आपने कहा कि आपके हस्बैंड मुसद्दक अली साहब का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी आप कहना चाह रही हैं कि उनके बेटे हमजा अली हैदर अली और उनकी तरफ से हमजा अली और हैदर अली के फादर यानी कि मुसद्दक अली भाई और जन्नत जी उनके हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे। हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे और हमारी तमाम टीम की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे और फिर दिलजीत दोसांझ साहिब की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, स्पेशल गीत आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में हैप्पी बर्थडे। सुनो तो इन्जॉय करो।

0: जी ये तो थी जी हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन। कितना अच्छा होता है ना, कोई ख़ास दिन हो जाता है और अच्छा लगता है। तो आज मोहम्मद बशारत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नाहिद जी, मैं अपने आप को नहीं कह रही, हमारी एक लिसनर भी है नाहिद, और मुझे इतना मज़ा आता है कहने में। हेलो नाहिद, कैसी हो? तो मोहम्मद बशारत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रोग्राम की तारीफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को सराहने के लिए, मेरी आवाज़ की तारीफ़ करने के लिए, अल्लाह की देन है। फरजाना जी, आपकी कॉल आ रही है लेकिन इस टाइम मैं बात कर रही हूँ ना, जब मैं गीत लगाऊंगी फिर आप प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा, अभी मैं आपकी कॉल ले नहीं पाऊँगी। तो ऐसा है कि कुछ कॉल्स इसी लिए भी मिस हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो फिर कॉल आ जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है लेने। एंड आई फील रियली रियली बैड के मेरे इतने अच्छे कॉलर्स, इतने अच्छे लिसनर्स टाइम निकाल के मुझे फ़ोन करते हैं। तो गीत लगेगा बाद में, लेकिन बाद की क्या बात है? बाद की बात ये है जनाब कि बाद किसने देखा है, बाद किसने देखा है? बाद कुछ नहीं होता, बाद उम्र ढलने के याद कुछ नहीं होता। वक्त पर न छोड़ो यार, वक्त तो कमीना है, आज में जो जीता है असल में वो जीना है। लोग लोग होते हैं, लोग लोग होते हैं, खुशगवार रास्ते पर हंस के साथ चलते हैं, दश्त की तमाजत पर सबके पांव जलते हैं, इस कदर भी लोगों पर वक्त मत निछावर कर, इस कदर भी लोगों पर वक्त मत निछावर कर। कारोबार दुनिया में वक्त रेजगारी है, जो घड़ी मुयस्सर है वो घड़ी तुम्हारी है। बाद किसने देखा है, बाद कुछ नहीं होता, बाद उम्र ढलने के याद कुछ नहीं होता। जी सामीन, तो यही बात है बाद की। तो हम कर लेते हैं अपना टाइम चेक, और फिर टाइम चेक करने की बात क्या होगा जी, हमारी होगी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सुनेंगे फ्लैशबैक गीत, पुराना गीत। और फिर नहीं जी, मैं सोच रही हूँ कि हम फ्लैशबैक गीत के तौर पर आपकी फरमाइश वाला गीत नूरजहाँ का वो पेश करें। सुनते रहिएगा, बंधे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हमारी आवाज़ और आपकी समातों का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। सुनते हैं सबसे पहले पर टाइम चेक, और उसके बाद कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 11:44 हुआ चाहते हैं, और यानी कि 11:45 हो गए हैं, 11:44 भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और फिर उसके बाद होती है जी हमारी मुलाकात आपसे फ्लैशबैक गीत के बाद। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: जी हाँ, मेरा दिल खो गया, तेरा दिल खो गया, नहीं अभी नहीं खोया जी। ऐसा है कि हम अपने जाएंगे फ्लैशबैक गीत की जानेब, जो कि मैं सोच रही थी कि चांदनी रातें लगाओ नूर जहाँ की आवाज़ में, लेकिन मैं अभी उसको ढूंढ नहीं सकी। तो फिर मैंने सोचा कि नूर जहाँ की आवाज़ में ही एक गीत लगा देते हैं फ्लैशबैक के तौर पे। तो आप ये इंजॉय कीजिएगा। नहीं जी, मैं ढूंढती रहूँगी, अगर मिला तो ज़रूर लगाऊँगी आप वाला, ठीक है ना।
1: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

असद का बर्थडे है। असद आज 24 साल के हो गए हैं, यानी कि 24 years old. Happy birthday, Asad, to you. From your mom, Farzana, from your sister, Sonia, and Aisha. Two sisters, Sonia and Aisha. तो ऐसा है कि माँ की तरफ से मैं अपने अल्फाज में आपको विश करती हूँ फरजाना जी की जानिब से सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे और तुम्हें ज़िंदगी का हर सुख दे, आमीन। बहनों की तरफ से सोनिया और आयशा की तरफ से कहना चाहूँगी, दुआ की सूरत में तेरी खातिर जो मेरे होंठों से अल्फाज निकलें और जो मेरी आँखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले जब अल्लाह भी तेरा नसीब लिखे, इसमें अरूज लिखे, कमाल लिखे, कभी ना हरफे जवाल लिखे। दुआ की सूरत में तेरी खातिर जो मेरे होंठों से लफ्ज निकले, जो मेरी आँखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले में अल्लाह जब भी तेरा नसीब लिखे, उसी में अरूज लिखे, कमाल लिखे, कभी ना हरफे जवाल लिखे, खुशियाँ लिखे और तेरी उम्र दराज लिखे। मेरे प्यारे भाई, सालगिरह मुबारक, सालगिरह मुबारक हो आपको, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे और आपको ज़िंदगी की हर खुशी अता फरमाए। आपको अल्लाह ताला, बेटा अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी, ऐब से पाक, परेशानियों से दूर ज़िंदगी नसीब फरमाए। आप अपने माँ बाप के लिए बल्कि इंसानियत के लिए फ़ख्र साबित हों। तो बढ़ते हैं जी और ये गीत की जानिब, जो कि अनदर बर्थडे विश है जी। जी फरजाना जी ने ये गीत की भी फरमाइश की है, तो गीत भी हम आपके लिए प्ले करते हैं, जो कि ले जाएगा हमें ठीक खबरों की जानिब।

0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
1: From the Sky News Centre at midday, an investigation into an attempted burglary, reportedly at a property linked to Nigel Farage, is being reopened by counter-terror police looking into Anne Widdecombe's death. The incident at an address in London was investigated, but no arrests were made and the case was closed. Two police officers are being investigated by a watchdog over alleged misconduct after a sex offender was free to murder two women and rape a third. 40-year-old Simon Levy was on bail and being monitored when he committed the crimes in 2025. Detective Chief Inspector Neil John thinks there must be other victims.
2: Simon Levy is a dangerous and predatory offender. His crimes were calculated, cruel and deeply disturbing. We remain relentless in pursuing offenders who perpetrate violence against women and girls. And we are appealing to anyone who has yet to report offences to come forward.
1: An escaped criminal who was convicted of raping a 10-year-old girl in 1990 has been traced by police in Scotland. Cliff Lyons Dobby had absconded from Perth city centre on Thursday while on escorted leave. Passengers travelling to and from Bristol Airport are facing delays of up to 5 hours after its runway was closed last night for emergency repairs. Flights have apparently resumed, but there are warnings of disruption. Heat health alerts have come into force this morning for large parts of England. It could reach 30 degrees, with many areas still in drought. Environmentalist James Marsden's been looking at the River Wye in Hereford.
3: What you can see now is some of the lowest flows I think I've ever seen. That means that any pollutants in the river are more concentrated, the water temperature is raised. So that combination of nutrient concentration, low flow, high temperature is really damaging.
1: And Bruno Guimaraes has signed for Arsenal. The club have announced they've bought the former Newcastle captain for £75 million. The Brazilian midfielder is the biggest summer acquisition so far for the champions. That's the latest. I'm Laura Safe.
4: वेलकम बैक सामेईन खबरों के बाद हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के सेकंड आवर में जी हां दूसरे घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो मैं हूं आपकी मेजबान नाहिद जट्ठा मेरा और आपका साथ रहता है ठीक 11 से 2 एवरी सैटरडे यानी के हर हफ्ता के रोज आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर ब्रेडफोर्ड में डैप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड कीथली इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर और लंकाशायर में ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में जी जनाब हमारे पास इस वक्त दो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं जब मैं बात कर लूँ जब दोषी गाना शाना ला लिए फिर तुसी सानू फोन करना तो फिर ऐसा फिर आपसे बात हो जाएगी तो अगर आप हमें एप्पल ऐप स्टोर पे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं www.sunriseradio.fm और www.sunrise.radio पर जी सामिन आज का प्रोग्राम बहुत बहुत स्पेशल है जिसमें हमारे बहुत ही अच्छी एक मेहमान आ रही हैं मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनको सुने और उनकी कहानी सुने और बहुत ढेर सा प्यार उनको दें ये आज का टॉपिक है आज की बात है लोगों के रवैयों पे और लोगों के रवैयों से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इसका टॉपिक है बढ़ते हैं हम अपने हिट ऑफ द आवर की जानेब उसके बाद आपसे दोबारा बात होती है हमारे साथ रहिएगा सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो
5: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire telephone 0800 015 7866

0: वाह, क्या ही खूबसूरत ट्रैक आपने सुना इब्रारुल हक की आवाज़ में। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। हिट ऑफ द आवर के तौर पर था। नदीम भाई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। नदीम मंसूर जी, और हमारी कॉल दो बार मिस हुई, नंबर एंडिंग विद 246। प्लीज़ आप मुझे दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा नेक्स्ट ट्रैक में। आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। तो जनाब, आगे अगर मैंने ट्रैक लगा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कम टाइम रह गया है हमारे कमर्शियल ब्रेक में और फिर टाइम चेक में भी। तो आपको चंद अशआर पंजाबी के सुनाती हूँ, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। तेरे दो नैन हंसते ने, तेरे दो नैन हंसते ने, गली दे लोग दसते ने, तेरे दो नैन हंसते ने, गली दे लोग दसते ने, बिना बारिश दे धरती ते गिड़े कई रोज वसते ने, तेरे पैरां दी पायल जो करे छन छन छना छन छन, तेरे पैरां दी पायल जो करे छन छन छना छन छन, दिलां दे तार वजते ने जिवें कोई प्यार दी सरगम, मोहब्बत इंज बरसती है जिवें किण मिण जिवें रिम झिम, जरा कु वक्त होवे ते दिले दा हाल दसना है, अजे एक इश्क है बाकी, अजे एक गीत लिखना है, अजे एक नज्म रहंदी है, अजे मैं नामुकम्मल हाँ, जरा तफसील बाकी है, मेरी तकमील बाकी है, तेरे दो नैन हंसते ने, गली दे लोग दसते ने, बिना बारिश दे धरती ते गड़े कई रोज वसते ने। जनाब, ये तो पंजाबी के चंद अशआर थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हम करते हैं टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद फिर हम जाएंगे, नहीं बल्कि ऐसा करते हैं, एक दफ़ा से फिर आपको याद दिला देते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत बहुत ख़ास है। इसकी एक वजह है, जैसे हम बात करते हैं अपने आप को सुधारने की, हम कौन होते हैं जो किसी को सुधार सकें, हम खुद ही सुधर जाएं तो ही बड़ी बात है। हम अपनी हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, हमारी ज़बान से, हमारे इशारे से, हमारे किसी एक्शन से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, लेकिन फिर भी इंसान है ना, कोताही हो जाती है। तो समीन, आज का टॉपिक जो है हमारे रवैयों पे है, कि हमारे रवैये कैसे होते हैं किसी के साथ, हमारी छोटी सी हरकत से किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंच सकती है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से, इसी वजह से जो हमारी आज के टॉपिक के हवाले से मैंने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, वो पहले बहुत ही कमज़ोर इंसान थी, बच्ची हैं, उनकी साथ जो हुआ इन लो हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे के रवैयों की वजह से, वो अपनी स्टोरी बताएंगी। पहले कमज़ोर थी, अब बहुत बहादुर हो चुकी हैं, इतनी बहादुर कि वो सनराइज रेडियो पर आके अपने साथ बीती हुई बातों को ज़िक्र करेंगी, और वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हैं कि उनको इतनी तकलीफ़ पहुंची कि वो पागलखाने पहुंच गई, वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई, और फिर वो कुछ ठीक होकर वापस आई तो लोगों ने फिर उनके ऊपर उसी तरह से अपने रवैयों के वार किए कि वो दोबारा फिर वहाँ पे पहुँच गई, और उनको कभी जिन उनके निकलवाने भेजा जाता रहा, कभी उनके साथ वो हुआ जो हम रील्स में वीडियोस में ड्रामोस में देखते हैं। और ये असल इंसान की हकीकी कहानी, बहुत दूर से हमारी मेहमान आ रही हैं, शहर से बाहर रहती हैं, ज़ारा हुसैन। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि बहुत अच्छे से उनको सुनिएगा, उनको बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस मुआशरे ने एक इंसान की ना सिर्फ ज़हनी हालत ख़राब कर दी बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। करते हैं टाइम चेक और उसके बाद बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी सामिन, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:15, 15 मिनट्स पास 12। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। सनराइज
2: रेडियो। कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

बहुत ही खूबसूरत दो गाना आपने सुना, उम्मीद है एंजॉय किया होगा। और जनाब क्या कहते हैं जी, किसी और चेहरे को देखकर, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई, तेरा नाम लेके मिला उसे मेरे हाफ़से का ये हाल था। कहीं खून दिल से लिखा तो था तेरे साल हिजर का सानहा, वो अधूरी डायरी खो गई वो न जाने कौन सा साल था। यानी कि भूल जा रहे हैं अब सब चीज़ें। शायर ये कहना चाह रहा है कि मुझे डायमेंशिया होता जा रहा है, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई, तेरा नाम लेके मिला उसे मेरे हाफ़से का ये हाल था। कहीं खून दिल से लिखा तो था तेरे साल हिजर का सानहा, वो अधूरी डायरी खो गई वो न जाने कौन सा साल था। क्या मज़े का शेर है। चलिए जी, इस शेर के बाद सुनते हैं एक और गीत, कचरा लगा के एंजॉय कीजिएगा। आपने नहीं कचरा लगाना, रुके रुके गाना है कचरा लगा के। कचरा लगा के एंजॉय मत कीजिएगा, वैसे एंजॉय कीजिएगा।

0: हाँ जी, कजरा गिरा, कजरा लगा के जाइयो ना। मैंने कहा था ना आपको कि आपने कजरा लगा के नहीं सुनना, आपने सिर्फ गाना सुनना है। तो ऐसा है सामीन कि चंद मिनट बाकी हैं, बल्कि एक मिनट बाकी है हमारी कमर्शियल ब्रेक के लिए। तो मैं आपको चंद अशार सुनाती हूँ और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब। उम्मीद है आप अशार भी इंजॉय करेंगे और हमारी कमर्शियल ब्रेक को भी इंजॉय करेंगे। और मज़े की बात कि जो हमारी बहुत बहुत मौजूद मेहमान हैं वो इस वक्त स्टूडियो में आ चुकी हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज का शो बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है। हम लोगों के इंसानी रवैयों की बात करेंगे और इंसानी रवैयों के हवाले से हमारे ऊपर क्या अफेक्ट होता है। बहुत सी चीज़ें हम कह गुज़रते हैं, कह देते हैं, कर देते हैं, और लेकिन जो किसी अगले बंदे के दिमाग पर, अगले बंदे की पर्सनालिटी पर वो कैसे गिरती हैं और उसको कैसे डैमेज करती हैं, ये इसके बारे में आज बात होगी। हमारी मेहमान को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे अपने लिसनर से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मेहमान को ढेर सारा प्यार देंगे, जिससे जितना वो डिज़र्व करती हैं उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा है कि एक शेर कहूंगी और उसके बाद कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाऊंगी। एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिले, एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिली, सारी मोहब्बतों से मुकरना पड़ा मुझे। यानी कि अगर कोई आपके साथ कोई बैड ट्रीट कर देता है तो बाकी लोगों से भी एतबार उठ जाता है। तो शेर यह है, एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिली, सारी मोहब्बतों से मुकरना पड़ा मुझे। सामने इसके साथ ही बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार एक खूबसूरत गीत के साथ। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। On Sunrise
1: Radio. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord, you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

हाँ जी जनाब, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। उम्मीद है गीत आपने एंजॉय किया होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि बढ़ेंगे अपने एक और गीत की जानिब, और उसके बाद जैसे ही ये गीत ख़त्म होगा तो फिर हिट ऑफ द आवर होगा। हिट ऑफ द आवर के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी हमारी मेहमान से, ताकि नेक्स्ट आवर में हम उनसे सवालात और जवाबात कर सकें और उनसे हम बातें कर सकें। तो इस गीत के बाद हम बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद हिट ऑफ द आवर, फिर हमारी जो हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बंधे रहिएगा हमारी आवाज़ और आपकी समातों की डोरी से। जी हाँ, कहीं मत जाइएगा, सुनते हैं ये वाला गीत। हाय, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।

0: बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मुझे पता है क्या सलूक किया जाए, तनु टाइम दस्या जाए। चलिए जी आपको टाइम बताते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं जनाब के हुआ चाहते हैं 44 मिनट पास 12। और अब हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा हमारा फ्लैशबैक गीत। और याद रहे, स्ट्रेट आफ्टर फ्लैशबैक गीत हम आपका तारुफ कराएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, बल्कि हमारे मेहमान का तारुफ और इंट्रोडक्शन कराएंगे आपसे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आवर होगा हमारा, वो होगा लाइव टेलीफोन कॉल्स का, जो कि हमारा डिस्कशन आवर है। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो, हमारे साथ रहिएगा।

0: याद कभी कभी।
1: जी समीन, वेलकम बैक। मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हाँ जी, ऐसा ही होता है, मोहब्बत तो कभी कभी ही मिलती है। जो मिलती है उसको संभाल लेना चाहिए, क्या ख्याल है? कहते हैं ना, तुमको हर चीज़ मुयस्सर है, तुम्हारा क्या है? तुमको हर चीज़ मुयस्सर है, तुम्हारा क्या है? काश महरूम से पूछो कि गुजारा क्या है। तुम कहो तुमको मरासम में गवारा क्या है? तुम कहो तुमको मरासम में गवारा क्या है? हम तो सह जाएंगे हर बात, हमारा क्या है। जी ज़मीन, इसके साथ ही अगले गीत पर जाने से पहले मैं आप का तारुफ करवाना चाहूँगी हमारी मेहमान ज़ारा जी के साथ। ज़ारा जी के साथ हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मेहमान प्रेजेंटर मौजूद हैं, और जो कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जैफ साहब। हमने उनको भी दावत दी है, जैफ को भी। वेरी वेलकम जैफ एंड वेरी वेलकम ज़ारा। जैफ को भी मैंने दावत दी कि वो भी अपने एक्सपर्ट व्यूज़ भी साथ साथ देते जाएंगे। तो आप दोनों लाइव ऑन एयर हैं। सबसे पहले ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: ज़ारा, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इतनी दूर से आप हमारे पास आए स्टूडियो में, और ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है जो आपने की है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: जज़ाकल्लाह खैर, आपने बुलाया और हम कैसे ना आते।
1: हमारी इज्जत अफजाई है, और ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो बातें हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि जिस पे बीती होती है उससे बात सुनना देखने में और पढ़ने से बहुत फ़र्क होता है। और जैब, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल जैब। आपने भी टाइम निकाला और स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप आ गए, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपका हर वक्त मेंटल हेल्थ के पेशेंट से रابطہ रहता है। तो हमने सोचा कि

0: कहा है, तो वो जो चीज़ें हैं वो दिमाग में रह जाती हैं. जैसे बंदा सोचता है कि इंसान बड़ा हो रहा है और वक्त के साथ, लेकिन वो आपके दिमाग में एक लाइब्रेरी की तरह, आपने शायद वो किताब कहीं पे छुपा दी है, आपको लगता है कि शायद वो कहीं गुम हो गई है, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि आपके वो सब कुछ क्लियर, वो जो आप पे गुजर चुका होता है, फिर भी ये है कि ज़िंदगी के साथ साथ आप पे और चीज़ें इस तरह होती हैं, और मुश्किलात आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है. उसकी वजह से
1: आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो जाता है.
0: जी, मेंटल अफेक्ट होता है क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं आप पे अफेक्ट करती हैं. कुछ ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि आपकी अगर फैमिली में अगर किसी को कोई मेंटल इश्यूज हैं तो वो ये आगे आपकी नस्ल में जा सकते हैं, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है. तो इस और ये जो चीज़ है ना, ये इसको छुपाना या इसको स्टिग्मा कहना या इसको इस टॉपिक को तबू कहना कि इसके बारे में बात नहीं करनी, ये शेमफुल है या ऐसे है, मैंने अपनी लाइफ में मैंने हमेशा ऑनेस्टी को तरजीह दी है और मैंने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई. इवन कि अगर किसी से दोस्ती करती हूँ तो उनको भी बताती हूँ कि आई हैव गॉट दिस इशू एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग हु आई एम प्राउड ऑफ इवन बीइंग डायग्नोस्ड विद व्हाट आई एम, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी.
1: बिल्कुल,
0: ये मेरी पर्सनालिटी है और मैं इसको बदलना नहीं चाहती.
1: जबरदस्त, बहुत अच्छे सारा जी. आपसे अगला पूरा घंटा हम इस बारे में बात करते रहेंगे. तमाम लिसनर्स, अगर आप हमारी इस मेहमान से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274 जो कि ब्रेडफुट का कोड है 306666 पर. हम बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब जो कि हमें ले जाएगा ठीक खबरों की तरफ, और फिर हम ज़ारा जी आपसे पूरा अगला घंटा बात करेंगे जो कि हमारा डिस्कशन आवर है. ठीक है
0: जी, शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया जी. समय इंजॉय कीजिएगा गीत. मिलो ना तुम तो हम घबराएं, हाय हाय.

0: जी हाँ, हमें क्या हो गया है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अपने न्यूज ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.

0: from the Sky News Centre at 1. An investigation into an attempted burglary reportedly at a property linked to Nigel Farage is being reopened by police looking into Anne Widdecombe's murder. The incident in London was investigated, but the case was closed without arrests. Counter-terrorism officers say they've identified a potentially relevant line of inquiry that was not pursued at the time. Our political correspondent Rob Howell says it's also referred itself to the Independent Office for Police Conduct.
1: What that essentially means is that the failure to follow up that line of inquiry at the time was deemed serious enough that they had to pass it on to the complaints watchdog, who will now likely look into the circumstances around that initial investigation and why the line of inquiry wasn't pursued then.
0: Police are appealing for more victims of sex offender Simon Levy to come forward. The 40-year-old faces life in prison after he murdered two women and raped another while on bail for other sexual offences. FIFA's president strongly denies allegations that UEFA paid off a woman described as his lover while the head of European football's governing body. It comes as Gianni Infantino fights for his future following his aborted plans to sell off stakes in the World Cup to private investors. Passengers are experiencing delays at Bristol Airport after its runway was closed last night for emergency repairs. Flights have apparently resumed, but people have been warned to expect disruption. In sport, Bruno Guimaraes has signed for Arsenal. The former Newcastle captain joins for £75 million. He's the champion's biggest summer acquisition, and former England defender Michael Dawson says it's a huge statement.
2: One thing you can't do is stand still in the Premier League, because there's teams coming behind you that want to be where you are, and we saw it for numerous years with Manchester City. You look at the Arsenal squad as it is and you go, right, they're favourites to go and win the Premier League again, but we also know how hard it is.
0: And heat health alerts have come into force ahead of the UK's fifth heatwave of the year. The yellow alert for parts of England lasts until Tuesday at 9 p.m. That's the latest. I'm Laura Safe.
3: Welcome back, Sameen. हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद और प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे घंटे में दाखिल हो चुके हैं, लास्ट आवर ऑफ द शो. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 103.2 एफएम और 100.6 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर. डैब पर अब जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीथली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर में आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में. डाबी में भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अगर आप हमें नहीं सुन पाते इन सब स्टेशंस पर तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio. जनाब जिन्होंने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनकी इतला के लिए, मेरा नाम है नाहिद चट्ठा, मैं हूँ आपके इस प्रोग्राम की मेज़बान. मेरा शो हुआ करता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, 11 से 2 बजे हर हफ्ता के रोज, जिसमें जो हमारा आखिरी आवर होता है प्रोग्राम का, जो कि अब है, वो होता है डिस्कशन आवर, जिसमें हम टॉपिक्स लाते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने माशरे के, अपने सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स की, कुछ ऐसे इश्यूज का जिसको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है, हम अपनी इसलाह करते हैं. तो आज का टॉपिक है हमारे माशरती रवैये. हमारे माशरती रवैयों में जो हमारे रवैये होते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ, वो किसी को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, किसी को कितनी तकलीफ़ देते हैं, इसका एक सबूत हमारे साथ हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी मेहमान ज़ारा मौजूद हैं और हमारे साथ जैफ मौजूद हैं, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं. और ज़ारा इन रवैयों का शिकार हुई, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए और फिर क्या कुछ हुआ, हम उनकी ज़बानी सुनेंगे. मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम लिसनर से, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा हमारी मेहमान को और ज़रूर इस प्रोग्राम को सुनिएगा और इस ये वाली एक घंटे की बातों को सुनिएगा. अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 01274-306666 पर, तो आपकी हम लाइव कॉल्स ले सकते हैं, आप ज़ारा जी से सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं. तो अभी हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब. हिट ऑफ द आवर के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा.
4: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
5: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.
3: जी सामेन, ये हिट ऑफ द आवर जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये चौधरी मुजफ्फर साहब की फरमाइश पर है, उनके तमाम दोस्तों और चाहने वालों के नाम और हमारी तरफ से सब लिसनर्स के नाम। एंजॉय कीजिएगा।

0: जी सामीन, चौधरी मुजफ्फर जी, उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। आपने तमाम दोस्तों के नाम नाहिद अख्तर जी की आवाज़ में ये गीत सुनना चाहा और तमाम दोस्तों के नाम करना चाहा, तो उम्मीद है चौधरी मुजफ्फर जी आपको ये गीत अच्छा लगा होगा। तो जनाब, अब बात हम करेंगे अपने मेहमानों से। जी जैव, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपसे कि आप कोई क्वेश्चन करना चाहें ज़ारा जी से, टू ओपन द कन्वर्सेशन, कि फिर उसके बाद ज़ारा जी आपसे हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं पे भी आप अनकंफर्टेबल फील करें, कहीं पे आपको लगे कि आप कोई बात नहीं करना चाह रही, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वहीं पे गाना लगा दूंगी। क्या ख्याल है समीन, ऐसा ठीक है ना? आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप भी अगर ज़ारा जी से कोई बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या उन्हें कोई हौसला देना चाहते हैं, ज़िंदगी की कोई सीख देना चाहते हैं, हम सबको तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा सनराइज रेडियो पर। जी जाव, ओवर टू यू।
1: Thank you so much. And Zara, my first question is to you, is how did you come across mental health? Like, what signs were you getting? How did everybody in the household treat you? Did they listen to you?
2: It was very difficult. It happened.
0: Urdu mein bhi saath saath baat karte hain, bahut se hamare listeners. So, aisa hai ki Zara ko kab feel hua ki unko उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, और फिर उनके घर वालों ने उनके साथ किस तरह से ट्रीट किया?
2: जी, तो शुरू में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो ख़ुद को समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये काफ़ी अर्ली मेरे साथ ये स्टार्ट हुआ, तकरीबन मैं 15-16 साल की थी और स्कूल गोइंग थी। मैं काफ़ी कंपेटिटिव हूँ हर चीज़ में, और स्कूल में भी अच्छे मेरे मार्क्स आते थे, लेकिन अचानक मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, नींद बहुत कम आती थी। ऐसा भी होता था कि आवाज़ें मुझे सुनाई देती थीं, या मुझे लगता था कि रात के टाइम जब मैं सो रही हूँ तो किसी ने टीवी लगा दिया है, फिर मैं ऊंचा कहती थी कि टीवी बंद करो, लेकिन टीवी ऑन नहीं होता था। तो शुरू में बहुत मैंने ये मुश्किल का टाइम गुजारा। जिन्होंने फर्स्ट मतलब थोड़ा सा रिएक्ट किया देखा, वो स्कूल वाले थे। स्कूल वाले थे, मैं
0: आपके टीचर्स, आपके क्लास फेलोज,
2: जी स्कूल वाले टीचर्स वगैरह, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके ग्रेड्स थोड़े नीचे जा रहे हैं कुछ। फिर नींद डिस्टर्ब होती थी, नींद नहीं आती थी, तो कई दफ़ा मैं क्लास में सो जाती थी, और ये ऐसा कभी नहीं पहले हुआ था। तो उन्होंने ये चीज़ नोट की, फिर उन्होंने वहाँ से ही उन्होंने चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को मतलब इन्वॉल्व किया।
0: अच्छा।
2: तो स्कूल में, क्योंकि मैं यूरोपियन कंट्रीज से आई हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री से, तो वहाँ पे उन्होंने फिर चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को बुलाया, फिर मीटिंग हुई, मेरे वालदैन भी थे, उनके साथ भी हुई, उन्होंने सवालात वगैरह पूछे। फिर उन्होंने, क्योंकि मैं स्टिल काफ़ी यंग थी, तो उन्होंने पहले डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की कि अच्छा कैमोमाइल टी रात को पी लो, रिलैक्स करो, ये करो, और लेकिन उससे भी मेरी नींद नहीं बहाल हो रही थी। तो फिर अर्ली एज में उन्होंने थोड़ी सी मेडिकेशन वगैरह देने की कोशिश की, नींद की भी दी, क्योंकि नींद काफ़ी मेरी डिस्टर्ब हो गई। और ये था कि बहुत मुश्किल मेरे लिए टाइम था, क्योंकि मेरे जो अपने बहन भाई थे उनको भी समझ नहीं आती थी, वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये नॉर्मल नहीं है। और
0: हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन फिर घर से ही पहले शुरू हो जाती है,
2: घर से ही शुरू हो जाती है कि अभी देखो इसको क्या हुआ है। और काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता था मेरे साथ ऐसे कि जैसे एक हफ्ता मैं बहुत हाइपर हो जाती थी, सबसे बात कर रही हूँ मतलब ऐसे, और अगला ही हफ्ता बहुत ही डिप्रेस हो जाती थी। फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि पिछला हफ्ता मैंने, जब मुझे मेरे क्लास फेलो आके कहते थे तुमने ये बोला, तुमने ऐसे ऐसे किया, तो मुझे होता था कि वाकई में मैंने ऐसे किया, वाकई में ये हुआ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है।
0: अच्छा, फिर इस स्टेज पे जैसे ही आपकी ये कंडीशन स्टार्ट हुई, जैसे लोगों ने नोटिस किया, तो लोगों के रवैये आपसे चेंज होने शुरू हो गए?
2: रवैये चेंज हो गए, अपने बहन भाई मेरा मजाक उड़ाते थे कि अब इसके कंधे ऊपर हो गए, ये हैंगर की तरह चल रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये मतलब आपको घर से ही जो है वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। फिर स्कूल में भी आप स्ट्रगल करते हो कि आपका मूड स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन आप होते हो, उसको लोग क्या समझते हैं, क्या उसको कहते हैं, आपकी अपनी माँ आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती, आपका अपना बाप आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, कुछ हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ पे कहने के जहालत है, नॉलेज नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है. फिजिकली तो हम मान जाते हैं कि अच्छा किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है उसको हम नहीं समझते, हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, हमारा जो कल्चर है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये इस बात को नहीं समझा जाता. और अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको इस पे दिया जाता है कि इसको नज़र लगी है या इसको कोई जिन्नात का साया है, फिर उस हवाले से वो ऐसे करते हैं. और मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा किया,
0: जिन्नात का साया है या नज़र लग गई है, इसके बारे में बहुत लंबी बात होगी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो रहा है. सॉरी ज़ारा, मुझे आपको बीच बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये ज़रूरी होता है, जिन्होंने पैसे देते ने उन्होंने कपड़े एडवर्टाइज ज़रूर लगानी पड़ती है. तो आई एम रियली सॉरी आपको, मैं टोक देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूरी है. समय हम बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब, बल्कि करते हैं पहले टाइम चेक, फिर कमर्शियल ब्रेक, फिर दोबारा ज़ारा जी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे.
3: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:15, यानी कि 1:15. बढ़ते हैं हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब, इसके बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा.
4: Sunrise Radio.
5: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत.
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुसल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230.

0: जी समीन, वेलकम बैक ब्रेक के बाद। जी समीन, हम सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। हमारी बात हो रही है, हमारी जो मेहमान हैं ज़ारा जी, उनसे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ज़ारा जी, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से वो समझ रहे हैं कि जादू हो गया है और जिन आ गए हैं या कुछ इस तरह।
1: शुरू में तो मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ आई, जैसे मैंने बताया कि बहन भाई भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और मतलब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि एकदम जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपको खुद समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। और इसी तरह फिर ये जो है वो मेरे साथ हुआ, ग्रेड्स भी मेरे स्कूल के मतलब नीचे चले गए, और इनकी इन वजूहात की वजह से मतलब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया कि अभी ये मतलब ग्रेड्स तो वो अच्छे नहीं ले रही, तो चलो इसको भी पाकिस्तान ले जाओ। वहाँ पे मैं 2 साल अपनी अम्मी के साथ मैंने स्टे किया, स्टडीज
0: पाकिस्तान
1: मतलब
0: में।
1: जी पाकिस्तान में मुझे स्टडीज छोड़नी पड़ी।
0: तो आपको जब घर वाले भी, बहन भाई भी मजाक उड़ा रहे थे, स्कूल में भी इस तरह हो रहा था, तो आप क्या फील करते थे?
1: बहुत दुख होता था कि अपने भी आपको नहीं समझ रहे, दूसरा जो मैं स्ट्रगल करी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे खुद भी इस बात की समझ नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि इस चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको समझने वाला भी कोई नहीं है। तो मतलब शुरू में थोड़ी सी ऐसे मेडिकेशन लेना, लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो मेडिकेशन भी होती है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीवियर होते हैं। मतलब उनको सहना, फिर आप पे कौन सी मेडिसिन सूट करती है नहीं करती है, यू आर जस्ट लाइक अ गिनी पिग, आप पे तजर्बात किए जाते हैं। तो
0: सॉरी, आप बात मुकम्मल कीजिए।
1: जी, तो ये बातें अच्छी नहीं है। मतलब मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से इस ऐसी वजूहात हुई कि मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ये अभी स्टडी तो ग्रेड्स अच्छे नहीं लेके आ रही, तो चलो पाकिस्तान इसको ले जाओ। तो मैं वहाँ पे 2 साल रही, मैंने घरेलू दूसरी चीज़ें सीखी, सिलाई कढ़ाई, मतलब खाना पकाना, ये वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने सीखी। उसके बाद मेरी शादी कर दी गई, शादी भी इन हालात में की कि मेरी उम्र 19 साल थी और
0: आप पहले इसी मुश्किल से गुजर रही थी, और ये पाकिस्तान में ही हुआ।
1: और वहाँ पे ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे डिप्रेस हुई, मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने हंसना छोड़ दिया, मैंने रोना छोड़ दिया। तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब समझा कि इस पे जिन्नात का साया है, फिर वो पीर के पास ले गए। वो पीर भी हमारे इस्लाम में ये चीज़ मना की गई है कि मतलब आप पीर के पास जाना या इस तरह करना, ये शिर्क भी में भी आ जाता है, लेकिन फिर वही मैं कहूँगी कि थोड़ी सी जहालत होती है कि पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, उसको आप इस चीज़ पे ले जाते हैं और लोगों की भी बातें मान लेते हैं कि हाँ वाकई इसको जिन ही चिमड़ा होगा या ये। तो उन्होंने भी ऐसे किया वहाँ पर ले कर जाने से, और जो भी वो जो तावीज़ वो पीर ने दिए और अगरबत्तियाँ वगैरह जो दी वो उन्होंने मतलब उनका इस्तेमाल किया, जिनकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई।
0: अच्छा, बजाय इसके कि आपको वहाँ पे किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाते या फिर आपको उस तरह की मेडिकेशन देते, आप वो जिन निकाल दें और उस चक्कर में आपको डाल दिया।
1: जी, और इन्हीं हालात में मेरी शादी हो गई, और शादी करके मैं चली गई अमेरिका। तो शादी भी ऐसी हुई कि मैंने निकाह के पेपर साइन करके अपने मतलब हस्बैंड को देखा और फिर सोचा कि अब क्या, मतलब अब तो ज़िंदगी इधर ही है।
0: आपकी 19 साल उम्र थी?
1: जी 19 साल 19 years old।
0: जी,
1: तो और ये था कि शादी के फौरन बाद मैं मतलब एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो वो ये हुआ कि जब मैंने अम्मी से कहा कि नहीं मैंने वापस नहीं जाना, तो मेरे अब्बू ने सुना वहाँ पे, आपको पता कि एक ऑनर की भी बहुत बात होती है, तो मेरे अब्बू ने कहा कि अगर इसने ऐसे कुछ सोचा ना तो मैं इसके 100 टुकड़े खुद ही करके फेंक दूंगा।
0: कि आपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाना? हाँ। क्योंकि आप अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को
1: नहीं, वो मुझे पसंद नहीं थे, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन जब पेरेंट्स भी आपको ऐसा बोलें तो आपको लगता है कि अभी बंदा कहाँ जाए, ना आगे का ना पीछे का, तो फिर पीछे ही जाना है ना, फिर तो आपको वही ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। उसके बाद ट्रेजिडीज़ भी फैमिली में आई कि मेरे अब्बू फौत हो गए, तो वो ये था कि जब अब्बू फौत हो गए तो अपना फिर गम थोड़ा लगने शुरू हो गया कि माँ ने मतलब मेरे बाप को लूज किया, फिर उसके बाद दो साल बाद जवान भाई फौत हो गया, तो वन आफ्टर दी अदर ट्रेजेडीज हुई कि जिसकी वजह से फिर इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है यही शायद मेरी किस्मत में है तो मैं इसी कोई जो है ना वो निभाती हूँ, और ऐसा मैंने किया काफ़ी सालों तक किया। और लेकिन ये कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब कोई समझने वाला भी नहीं हो, और मुझे इस बीमारी का जो डायग्नोज है वो भी बहुत देर बाद मिला, एंड सरप्राइजिंगली कि यूरोपियन कंट्री में या किसी डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज नहीं किया, जहाँ पे मुझे डायग्नोज किया गया वो एक्चुअली पाकिस्तान में आर्मी CMH हॉस्पिटल के कर्नल साइकाइट्रिस्ट ने मुझे डायग्नोज किया, और उन्होंने अच्छा। बड़े तरीके से मुझे समझाया कि ये क्या चीज़ है, आपके दिमाग में जो लिथियम एक किस्म का सॉल्ट है जो आपके दिमाग में कमी है, और आपके नर्व्स भी बहुत ही ज़्यादा वीक हैं जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा मैनिक थी, तो उन्होंने कहा कि जब इंसान को ये बीमारी होती है या मैनिक होता है तो आपका जो दिमाग है वो 10-20 गुना ज़्यादा चलता है आम इंसान से।
0: अच्छा।
1: आपकी इंटेलिजेंसी जो है ना वो हाई हो जाती है, IQ लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो हिस्टोरिकली भी जो आइंस्टाइन वगैरह जो जो बहुत ही
0: इंटेलिजेंट
1: लोग थे उनको मेंटल इश्यूज थे
0: डेफिनेटली थे। मैं क्योंकि आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि हमारे जो बड़े ग्रेट मास्टर्स थे, जैसे वैन गॉग था, वो 5 साल मेंटल हेल्थ असाइलम में रहा, सिजैन गोगैन, ये सब लोग, माइकल एंजेलो, ये सभी लोग जो थे इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि उनका ब्रेन फिर नॉर्मल लेवल से बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, उनको इश्यूज होते हैं बिल्कुल।
1: और इस वजह से मैं समझती हूँ कि इनसे हम लोग डील नहीं होते। आप सोचें कि अगर इंटेलिजेंट इतने लोग जो हैं 10-15 भी अगर जमा हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ का सामना दुनिया वाले नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें पागल कहलाया जाता है, हमें डायग्नोज दिया जाता है, हमें इतनी मेडिकेशन दी जाती है कि हमारे जो है ना कि हमारा जो दिमाग है ना उसको सुन कर दिया जाता है।
0: हाँ, वो स्लो बनाने के लिए उसको।
1: हाँ जी।
0: तो आपका वो फिर वो जो था पीरों वाला और वो जो आपको जिन्नात निकालने वाला वो वाला सिस्टम, फिर वो स्टॉप हो गया कि वो कैरी ऑन रहा?
1: नहीं, फिर वो स्टॉप हो गया, क्योंकि फिर रियलाइज हुआ कि ये एक मेंटल बीमारी है, इसको एक्सेप्ट करने में मेरे वालदैन को, मतलब उस वक्त तक मेरे अब्बू तो नहीं थे लेकिन अम्मी को टाइम लगा, और फिर कुछ जो फिर मेडिकेशन मुझे शुरू में दी गई उनका जो साइड इफेक्ट था वो भी बहुत सवियर था कि जैसे मेरी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो गई।
0: ओह, अच्छा। हम आज बात कर रहे हैं रवैयों पे
1: जी,
0: तो आपके इर्द गिर्द लोगों का रवैया आपसे फिर कैसा रहा?
1: लोगों का जो रवैया है वो कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं या इस बात को उनका मतलब आपको समझते हैं कि ये ठीक है, ये आपकी बीमारी है और आपको उस तरह एक्सेप्ट करते हैं बीमारी के साथ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो ये इस बात को नहीं समझते और उनको ये बात नहीं समझ में आती कि ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं होती। जब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैनिक हूँ, मैं हाइपर हो गई हूँ, नींद मेरी चली गई है, आम इंसान अगर एक या दो दिन ना सोए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 10-11 दिन गुजर जाते थे और मैं 1 घंटे की भी नींद नहीं करती थी।
0: लेकिन जो सोसाइटी थी वो आपको कैसे ट्रीट करती थी?
1: सोसाइटी ट्रीटेड माय नॉट सो गुड, के मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो कई दफ़ा फ्रेंड्स छूट जाती थी, कई दफ़ा काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के इतने साल जो मैंने गुजारे हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं हर मुश्किल वक्त से मैं गुजरी हूँ क्योंकि मेरा ईमान बहुत पुख्ता है, और ये इस बीमारी से या जो भी है आप तभी लड़ सकते हैं कि जब आपका ईमान, आपका अल्लाह पे तवक्कल और आपकी नमाज वगैरह कायम हो, तो ये चीज़ें फिर इन चीज़ों में से आप निकल सकते हैं। जिनके पास दीन भी नहीं है तो वो आई वुड से आर लॉस्ट, क्योंकि जब फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन होप होनी चाहिए।
0: हाँ होप होनी चाहिए. जो भी दीन है, जो भी कोई किसी का बिलीव है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं और हर एक का डिफरेंट तरीका है, रास्ता है अपने रब तक जाने जी, का जी. हम सब चीज़ों पर रिस्पेक्ट, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और एक जो बिलीफ होता है डेफिनेटली वो आपको स्ट्रेंथ देता है जी. ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ बिल्कुल. तो ज़रा फिर क्या हुआ कि जब आपके जो लोगों के रवैये थे आपके साथ, उनकी वजह से आपको आपकी हालत वर्स हो गई? उन्होंने जब लोगों की बातें सुनते होंगे आप, या फिर लोग जब आपसे सलूक किस तरह करते होंगे, उनके आईज से पता चल जाता है कि ये आपको देख रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते थे?
1: वो तो फिर आप बहुत ऑफुल फील करते हो कि इतना कुछ आपने दोस्ती के लिए भी किया होता है, अपनी फैमिली के लिए भी किया होता है, सबके लिए किया होता है, लेकिन उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती. उनको आपकी बीमारी नज़र आती है, उनको आपका रवैया नज़र आता है, या आपकी कही हुई बात याद आती है कि जब आप नहीं ठीक होते. और मैं कहती हूं कि ये बहुत अनफेयर है कि इंसान को जज करना या इंसान को ये मतलब करना और फिर अपने रवैये बदल देना. इंसान समझना चाहिए कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो मेंटल इलनेस है इसको या तो वो समझना चाहते नहीं है, या मतलब इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, नॉलेज भी नहीं है. लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वक्त गुजर रहा है और आप अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस करते हो, आप अपने चाहने वाले जो होते हैं, या आपकी औलाद है, या आपके पेरेंट्स हैं, या किसी को भी ऐसा हो सकता है, और जब आप देखते हो तब आप रियलाइज करते हो कि ये क्या चीज़ है, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी इस बात की समझ आती है. लेकिन उससे पहले जब तक आपको वो बात खुद नहीं हिट की जाती कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा हादसा हो या ऐसा कोई हो जिसको मेंटल इश्यूज हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात को समझते हैं. लोग इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं, आप पे एक वो स्टैम्प भी लग जाता है कि ये तो है ही ऐसी, अभी ये बीमार है, बीमार है, बीमार है, शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ insane, she's manic now. ये जो चीज़ें बार बार सुनना जो है ना, ये बहुत तकलीफ दे है कि जब
0: आपकी तकलीफ को बढ़ा देता है, आपकी बीमारी को बढ़ा देती हैं ऐसी बातें.
1: ऑफ कोर्स ये आपकी बीमारी को बढ़ाती हैं.
0: आपको डिप्रेशन ज़्यादा हो जाती है इससे?
1: डिप्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है, फिर गुस्सा भी आता है कि ये क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है. मुझे
0: दुख होता होगा बहुत ज़्यादा.
1: बहुत दुख होता है ऐसी सिचुएशन में. ऐसे लगता है कि जानवरों से भी बदतर मुझसे सलूक किया जाता है, तो मैं रब के आगे रोकती हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया है.
0: यही तो बात होती है कि हमें, हम चीज़ें कह जाते हैं, हम छोटी सी बात कह जाते हैं, लेकिन जो पर्सन इस चीज़ से गुजर रहा है, हमारे एक जुमले से उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी ये हम नहीं सोचते. हमारे हम एक दफ़ा उसकी तरफ देख के दूसरे के साथ नज़र मिला के हंस भी देते हैं ना कि ये देखो आ गई है, या इसके साथ ऐसे है, तो उस पर्सन के साथ क्या, क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव भी हुआ होता है इस अपनी इस तकलीफ़ को लेके, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी.
1: बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके अपने, आपकी अपनी सगी औलाद आपको नहीं समझती, या वो भी ये समझती कि यू नो कि अब ये माँ हमारी ठीक नहीं है, शी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, शी नीड मेडिकेशन, देन शी विल बी वेल. एक आप पे ये जब एक दफ़ा एक डायग्नोज आपको मिल जाता है ना, तो फिर आप जो है ना, आप अपनी फीलिंग नहीं दिखा सकते. अगर आपको गुस्सा आया ना, तो वो कहेंगे ओह अभी इनको गुस्सा आया हुआ है, तो अभी जो है ये बीमार है.
0: ये बात तो है. ऐसे तो सोचने की बात है. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई ऐसा, हमारे ऐसे अल्फाज ना हो, हमारा ऐसा कोई रवैया ना हो जो इस बात को किसी पेशेंट को या उनकी तकलीफ़ को बढ़ा दे. सामिन, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात. ज़ारा जी हमारे साथ मौजूद हैं. अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में टेलीफ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर. बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब. उसके बाद एक गीत होगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अगर आप हमें इस दौरान फ़ोन करते हैं और आप बात करना चाहते हैं, तो हम गीत को स्टॉप भी कर सकते हैं. तो सुनते हैं ये कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं. हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: For your family treat this summer,
5: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: खत्म।
1: अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। बहुत ही मैंने सोच समझ के मौके की मुनासबत से ये गीत लगाया और थोड़ा सा लगाया क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते ज़ारा जी से बातें करना। ज़ारा जी हाँ, अब बात हो रही थी पीर की।
2: जी, तो मैंने वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस किया और ये है कि इनके पास जिन्नात वगैरह होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा वो आपको ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ आप ही को पता होती हैं और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो वो इनके पास होते हैं और मुझे याद है कि मेरी अम्मी मुझे लेके गई तो उन्होंने इस तरह ना वो ऐसे तख्त जैसे पे बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसे छुरी निकाली वो साइड पे रखी और फिर वो जो उनके कहते हैं कि सो कॉल्ड मुअक्कल जो थे उनको उन्होंने ना पुकारना शुरू कर दिया ना।
1: अच्छा,
2: उनका नाम भी रखा हुआ था या मुजम्मिल।
1: अच्छा, तो हाँ। या मैंने समझा ये सिर्फ ड्रामो वगैरह में दिखाते हैं, ये सच
2: नहीं,
1: में भी
2: ये हकीकत है कि ऐसा ये करते हैं। ये जो पीर है ये जिन्नात को पाने के लिए ना इनको करना पड़ता है, जो जिन्नात का जो बाप है वो शैतान खुद है, तो इनको फिर इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिन्नात जो है गंदगी पसंद करता है, फिर वो इनसे मतलब कुछ इस तरह करवाता है
1: फिर आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? फिर रखा उसने छुरी? फिर
2: हाँ, उसने छुरी वगैरह रखी, उसने अपने मुक्किल को बुलाया और मैं इसे देख रही थी कि जैसे जब उसने अपने वो सो कॉल्ड जिन या मुक्किल को बुलाया तो वो पसीने पसीने वो बंदा हुआ हुआ था। तो पता नहीं अब उसने क्या उससे पूछा क्या नहीं, फिर इस तरह मुझे कुछ लिख के दे दिया गया कि ये आपने पीना है या आपने ऐसे करना है और तावीज़ भी दिए गए कि ये जो तावीज़ है आपने हर वक्त गले में करना है। उस वक्त वो एक माँ बाप की भी वो जो उन्होंने किया उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये शिर्क में आ जाता है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप एक अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ करें कि आपको अल्लाह ताला शिफा दे, लेकिन ये जो तावीज़ पहनना है, तावीज़ में पीर ने लिखा क्या है वो आपको सीख के दे देता है लेदर में या जो भी है, आपको पता नहीं होता कि इस पर क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पहना हुआ है। और जब आप एक दफ़ा इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर वो आप शैतानी कामों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ होती है, और आजकल का तो ज़माना इतना ख़राब है कि लोग पता नहीं दूसरे को खुश नहीं देख सकते, उसको वो रोता हुआ ही देखना चाहते हैं, उनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती।
1: ये भी हमारे बिल्कि सामीन, ये बात भी पॉइंट भी नोटेड है कि हम लोग, हम ही है ना, हमारा मुआशरा, हम ही है सोसाइटी, हम ही से बनती है ना, हम लोग किसी की खुशी को नहीं देख सकते। हम लोग जब कोई हंसता है, कोई किसी की अचीवमेंट है तो फिर हमें जलसी होने लग जाती है
2: जी।
1: तो वो फिर उसका आप पे कैसे इफ़ेक्ट हुआ?
2: मुझ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, मुझे ये चीज़ें भूलती नहीं है। मेरी शायद सबसे बड़ी ख़राब या जो भी कह लें अच्छी आदत या जो भी कह लें कि ये मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे बचपन से लेके अभी तक चीज़ें याद हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो वक्त गुजर गया है, ना तो आपके पास ऐसी कोई टाइम मशीन है कि आप पीछे जाके कुछ बदल सकते हैं, जो वक्त गुजर गया तो जो मेरी अम्मी कहती थी कि बस मिट्टी डालो, उसको उस बात पे उसको छोड़ देना चाहिए।
1: हमारे साथ राना नवीद साहब मौजूद हैं, हम उनको ऑन एयर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
1: जी राना नवीद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप?
3: जी मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं माजर चाहता हूँ, अभी किया तो आपकी बात सुन के मुझे अपील हुई कि आपसे बात करूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। जी हमारे साथ जारा जी और जैफ मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं, आप ऑन एयर हैं।
3: प्लीज थोड़ा सा मुझे बात बताइए कि आप क्या कह रहे थे, मुझे तो सिर्फ हिंट मिला।
1: अच्छा जी, बात ये कुछ यूँ है कि मेंटल हेल्थ और हमारे रवैये जो हैं एक इंसान को किस तरह से किस नहज पे पहुंचा देते हैं कि वो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो जाती है, फिर हम उनको पीरों फकीरों के पास ले जाते हैं, फिर एक इंसान की हमारे सोसाइटी में हमारे रवैयों से एक इंसान की ना तो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है बल्कि पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और हमारी इसके साथ इसकी ज़िंदा मिसाल ज़ारा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ ये बचपन से लेके अब तक हुआ।
3: तो मुझे ज़रा सा पहले तो हमदर्दी है उनके साथ, मेरी बहन के साथ। तो दूसरी बात यह है कि ये एहसास है बेसिकली, और कभी भी हम अपने आप से मुखलिस नहीं होते। जो जालिम लोग हैं ना
1: जी,
3: वो ज्यादती करने से पहले वो खुद मुखलिस नहीं होते अपने आप के साथ
1: जी।
3: तो ये बड़ा फुकदान है इंसान को अपना आप समझ आए ना जी। मेहरबान मेहरबान होता है, और मेहरबान आप तब होंगे जब आप ये समझते हैं कि आप पे एहसान हुआ है
1: जी। बिल्कुल।
3: और इखलास से ताल्लुक है इस बात का। और आप समझाएं, लाख नाहिद आपका नाम है?
1: जी मेरा नाम नाहिद है।
3: नाहिद, आप जितना भी किसी को समझाने, आप नहीं समझा सकते।
1: नहीं, हम नहीं समझा सकते। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहा करती हूँ, जो हमारे

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतों ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
1: Have you noticed the way fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

घरों बहर रेंदे एक आम इंसान दे नाल उहदे बचपन नाल उहदी मां नाल भैण नाल नानी नाल ते उहदियां बचपन दियां खेडां जिवें आटे दी चिड़ी ते हुण जदों बहर आ गया कल्ला आटा गुन्नदा ते याद करदा उस आटे दी चिड़ी नूं जिहड़ी कदे उहदी मां

0: सत्रीकाल जी।
1: सत्रीकाल जी, सत्रीकाल।
0: ए मेरी बेटी है ते ए मेरे हस्बैंड ने।
2: हां मैं ही है जी।
0: तुसी चुप करो जी, मेनू गल करन दियो। हां जी, मैं की कह रही सी भाजी, वेरी फ्रैंकली गल कर रही है तुम्हारे नाल।
1: हां जी।
0: मेरी बेटी ने 85 मुंडे देख ले ने आज तक।
3: डैड, व्हाट्स 85?
1: Oh, 85.
3: 85? Pretty, has she seen enough boys that I ain't gonna marry this?
1: Oh, chup kar.
0: Par ik vi pasand nahi aaya munda.
1: Kade nahi aaya?
0: Oh na, ik munda te Australia to vi aaya si jahaj vich baith ke.
1: Haan ji.
0: Onu te hawa ch uda ditta si assi.
1: Achha ji?
0: Haan ji. Ik munda Leeds to vi aaya si Ferrari vich baith ke.
1: Haan.
0: Te oh na, inni soni gaddi si, sara London dekh ke hairan ho gaya si. Ke inni soni gaddi vich munda aaya, oh kinna sona hoga. Par जिन्नी तेज फरारी च आया सी उन्ना ही तेज असी उनु दड़ा भी दिता सी।
1: अच्छा?
0: देखो जी, मेरी बेटी ते हैगी है 24 कैरेट गोल्ड। वैसे ना मेनू ना जवानी विच सारे हेमा मालिनी कहंदे हुंदे सी।
4: मेनू धर्मेंद्र?
0: मैं कहनी तुसी चुप करो, मेनू गल करन दियो।
1: ये तो पहला जांदी अपने हस्बैंड दी।
0: हां जी, वैसे ओदा साडा रिश्ता भी हैगा मालिनी खानदान नाल थोड़ा बहुता।
1: अच्छा जी।
0: पर तुसी मेरी गल एक सुन लो प्लीज। मैं तुहानु बहुत ही फ्रेंकली कह रही हां कि मेरी बेटी हैगी है बहुत ही सोहनी खूबसूरत कुड़ी, ते मेनू एदे वास्ते मुंडा चाहिदा आ, उच्चा लंबा बहुत ही सोहना होवे, जिवें एक्टर्स हुंदे ने ओदा। हां जी।
3: डैड, दिस वुमन डजंट शट अप।
1: चुप कर।
0: वैसे मेरी बेटी ते कह रही सी मैं बर्मिंगम तो मुंडा नहीं देखना, मेनू बर्मिंगम दे मुंडे चंगे नहीं लगदे, पर मैं ही इनू जोरा जर भी इत्थे ले आई हां।
3: राइट, दैट्स इट। फिर तुसी इत्थे छोले लेण आए हां?
0: ऐ तुहाडा मुंडा? ऐ वै, एड्डा बदतमीज मुंडा है, मेनू पता हुंदा मैं इत्थे कदे ना आउंदी। ओहो, ऐ ते असी गलत जगह ते आ गए हां, हुण ते 86 हो गए मुंडे, हुण भी पसंद नहीं आया सानू, असी चलने हां जी।

wonderful. It's about time.

बड़े बड़े पंजाब के कलाकार आए हुए हैं।